फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोजख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजरे नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जो तहफ़ कहते सुप्रीम लीडर जी रहन भाई भाई राज्य हकन वकार आज़ादी तहफ़ क्यों।

ॿियनि मुल्कनि वटि बैलिस्टिक मिसाइल आहिनि, ईरान वटि बि बैलिस्टिक मिसाइल हुजण में को हर्ज न आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान वटि बैलिस्टिक मिसाइल हुजण जे दिफ़ा में चयो आहे त जेकॾहिं सऊदी अरब, कतर ऐं ॿियनि मुल्कनि वटि बैलिस्टिक मिसाइल आहिनि त ईरान वटि बि हीउ मिसाइल हुजणु क़बूल आहे। ट्रंप जो चवणु आहे त अमरीका अमुल लाइ पुरज़म आहे, विच ओभर जूं समूरियूं धुरियूं बि पंहिंजे अज़म ते क़ाइमु रहनि। तेल क़ीमतुनि में घटिताई ऐं स्टॉक्स में बहितरी अची रही आहे। असां लिबनान, हिज़बुल्लाह ऐं इसराइल समेत समूरनि महाज़नि ते मुकमल जंगबंदी जी उमेद रखूं था। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त अमरीकी आवाम जे टैक्स जे पैसनि मां हथियार ख़रीद कंदड़ इसराइल मुफ़ाफ़ती यादाशनामे ते कहिड़े मुंहं सां तनक़ीद करे रहियो आहे। इसराइल खे अमुन जे अमल जो एतराम करणो पवंदो। बैरूत ते हमला क़बूल न आहिनि। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग दौरान संदसि चवणो त मुआदे करात में अबनाए हुर्मुज मां 1.20 करोड़ बैरल खां वधीक तेल जी फरहमी थी चुकी आहे। ईरान कंहिं बि जहाज़ ते हमिलो न आहे कयो। ईरान आबनाए हुर्मुज खोलण वारे शर्त जी पासदारी करे रहियो आहे। जे डी वेंस जो उहो बि चवणु आहे त ईरान खे $300 अरब जी फरहमी वारनि ख़बरुनि में का सदाकत न आहे। तहरान खे $1 बि न मिलंदो। ईरान खे उहे फ़ाइदा तॾहिं मिलंदा जॾहिं पंहिंजे रवैये में तब्दीली आणींदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जी पी खे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरनि खे एहतजाज करण वारनि ऐं वापसि ॻाल्हियुनि करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडुनि में हिसो वठण जो बि ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर खे बि नओं मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणा सां न पर कानून सारी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन खणणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियण न ॾींदासीं। मुआजरनि जूं सीटूं बंदूक जे ज़ोर ते ख़तमु नथियूं करे सघजनि। घणो थियो, हाणे एहतजाज ख़तमु कयो। एक्शन कमेटी पहिरीं मुआदे ते अमल करे ऐं चूंडुनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे हुन सां कश्मीर ख़ासि खे नुक़सान थिए पियो। गिलगित बस्तान में हुकूमत सादी ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग इतफ़ाक़ करे वरितो। पीपल्स पार्टी अॻवान नवीद कमर चयो आहे त गिलगित जो वॾो वज़ीर जियालो हूंदो, गवर्नर ऐं डिप्टी स्पीकर नून लीग जो हूंदो। हुकूमत सादी जे मामलनि ते नून लीग सां इतफ़ाक़ थी वियो आहे। ॿ ॾींहं अॻु नून लीग वफ़द बिलाल भुट्टो सरदारी सां मुलाक़ात कई हुई।

0: और आप देख रहे हैं कि जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूं, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं चट्टी नहीं हूं, चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक है। तो मैं कोई हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफ गार्ड करना है, आईन के दायरे में रह के करना है।
1: वफ़ाक ॾिन पैसा चटी नंबर आहिनि ज़िमेवारी आहे, वफ़ाक ॾिन टिनि सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं। एनएफसी जे फार्मूला में तब्दीली बि गौर हेठि आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ सपोर्ट कयो। वफ़ाक़ मदद ॾियण लाइ सूबनि का न का क़ीमत ज़रूरु अदा कई आहे। सिंध हुकूमत आहे इन खे इस्तेमालु कंदे मुल्की दिफ़ा लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रुपयनि जी लॻभॻि खसारो आहे। सिंध खे वफ़ा खां 2,263 अरब मिलंदा। सूबाई अदब 456 अरब रुपया रखियो वियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारो मदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथ ॾेई रहिया आहियूं।
0: पता नहीं है कि क्या क्यों ये बातें, अच्छा मैंने ये कहा था नहीं 10 साल से बातें हो रही हैं। जिस दिन मैंने वोट उठाया था जुलाई 2016 को, 30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। और ये बातें जरूर आप लोग करेंगे ना यार, इसके बगैर है क्या जिंदगी में मजा? तो मुझे नहीं, हकीकतन नहीं पता, ठीक है। मुझे उस दिन कहा गया था, कुछ नाम लिए गए, मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही टीज कर दिया, इसलिए कि जो 4 नाम उन्होंने लिए थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जियाला अपनी लीडरशिप के, तो वो ऐसी बात

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: और 10 GB व्हाट्सएप, 60 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और तो और 1000 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 250 रुपए के लोड में। अभी डायल करो *9277# और बेमिसाल

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8।
2: आप सुन रहे थे, अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अमेरिका सां इस्लामाबाद माहिदे ते मुंहिंजो मौक़िफ़ मुख़्तलिफ़ हो। ईरानी सदर ऐं ॿियनि इख़्तियारनि ईरानी क़ौम जे तहफ़ुज़ जी ज़िमेवारी खईं, जंहिं बाद मूं माहिदे जी इजाज़त ॾिनी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई जो अमेरिका सां थियल मुफ़ाहमती यादाश्त ते मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो। मुश्तबा ख़ामनाई जारी कयल बयान में चयो आहे त अमेरिकी सदर मायूसीअ में हर क़िस्म जा हरबा इस्तेमालु कया। ॻाल्हियुनि जो इहो मक़सदु हरगिज़ नाहे त असां दुश्मन जे मौक़िफ़ खे तस्लीम कयूं था। अमेरिका हद खां वधीक मुतालबा कंदो त असां क़बूलु न कंदासीं। ईरानी परॾेही वज़ारत वारा सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई जे बयान जी आजी आहे। परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त परॾेही पॉलिसी ईरान जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कंदी। सुप्रीम लीडर जी रहनुमाई में ईरान जे हक़नि, वक़ार ऐं आज़ादीअ जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ॿियनि मुल्कनि वटि बैलिस्टिक मिज़ाइल आहिनि त ईरान वटि बि बैलिस्टिक मिज़ाइल हुजण में को हर्ज न आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान वटि बैलिस्टिक मिज़ाइल हुजण जे दिफ़ा में चयो आहे त जेकॾहिं सऊदी अरब, कतर ऐं ॿियनि मुल्कनि वटि बैलिस्टिक मिज़ाइल आहिनि त ईरान वटि बि मिज़ाइल हुजणु क़बूल आहे। ट्रंप जो चवणु आहे त अमेरिका अमन जे लाइ पुरअज़म आहे। विच ओभर जूं समूरियूं धुरियूं बि पंहिंजे अज़म ते क़ाइमु रहनि। तेल जी क़ीमतुनि में घटिताई ऐं स्टॉक्स में बहितरी अची रही आहे। असां लबनान, हिज़बुल्लाह ऐं इसराइल समेत समूरनि महाज़नि ते मुकमल जंगबंदीअ जी उमेद रखूं था।

अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त अमेरिकी अवाम जे टैक्स जे पैसनि मां हथियार ख़रीद कंदड़ इसराइल मुफ़ाहिमती यादाश्त नामे ते कहिड़े मुंहं सां तनक़ीद करे रहियो आहे। इसराइल खे अमल जे अमल जो एहतराम करणो पवंदो। बैरूत ते हमला क़बूल न आहिनि। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग दौरान संदसि चवणो त माहिदे बाद हिकु राति में आदना हरबुद मां 1.20 करोड़ बैरल खां वधीक तेल जी फरहमी थी चुकी आहे। ईरान कंहिं बि जहाज ते हमिलो नाहे कयो। ईरान आदना हरबुद खोलण वारी शर्त जी पासदारी करे रहियो आहे। जे डी वेंस जो इहो बि चवणो त ईरान खे 300 अरब डॉलर जी फरहमी वारनि ख़बरुनि में सदाकत नाहे। तहरान खे 1 डॉलर बि न मिलंदो। ईरान खे इहे फ़ाइदा तॾहिं मिलंदा जॾहिं पंहिंजे रवैये में तब्दीली आणींदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान खे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में नुमाइंदगी ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरीन खे एहतजाज ख़तम करण ऐं वापसि ॻाल्हियूं करण जो मशवरो। आज़ाद कश्मीर में थींदड़ चूंडुनि में हिसो वठण जो ऐलान। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त आज़ाद कश्मीर खे बि नओ मंशूर ऐं पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ॾियणी पवंदी। आज़ाद कश्मीर जो मसइलो धरणे सां न पर कानून साज़ी सां हल थींदो। आज़ाद कश्मीर में कानून हथ में खणंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन करणो पवंदो। असां आज़ाद कश्मीर खे वधीक नुक़सान थियणु न ॾींदासीं। महाजरनि जूं सीट्स बंदूक जे दौर ते ख़तमु नथियूं करे सघजनि। घणो थियो, हाणे एहतजाज ख़तमु कयो। एक्शन कमेटी पहिरें माहिदे ते अमल करे ऐं चूंडनि तरफ़ वञे। आज़ाद कश्मीर में जेको कुझु थी रहियो आहे इन सां कश्मीर कास खे नुक़सान थिए पियो।

0: और आप देख रहे हैं कि जरूरत सिर्फ उसकी नहीं है, उससे मैं भी अफेक्ट हो रहा हूं, दिफा पे हर एक अफेक्ट हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं चट्टी नहीं दू, चट्टी नहीं है, हमने आईन के मुताबिक दिया है। मैं कोई हर एक की अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच सिर्फ इस हद तक है कि मुल्क की बेहतरी चाहिए, अपने आप को सेफगार्ड करना है, आईन के दायरे में रह के करना है।
1: वफ़ाक़ खे ॾिनल पैसा चटी न पर आईनी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक़ खे 3 सालनि ताईं फंड्स ॾींदासीं। NSE जे फार्मूला में तब्दीली बि घोर हेठि आहे, पर फ़ैसिलो इतफ़ाक़ी राय सां ई थी सघे थो। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त मुश्किल वक़्त में सूबनि मुल्क ख़ातिर वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो। वफ़ाक़ खे मदद ॾियण जे लाइ सूबनि कान का क़ीमत ज़रूरत आहे कई आहे। सिंधु हुकूमत आईनी हक़ इस्तेमालु कंदे मुल्की दिफ़ा जे लाइ पैसा ॾिना। बजट में 300 अरब रुपियनि जे लॻभॻि खसारो आहे। सिंधु खे वफ़ाक़ खां 2,263 अरब मिलंदा। सूबाई हदफ़ 456 अरब रखियो आहे। सरकारी नौकरियुनि ते माण्हुनि जो दारोमदार घटाइण चाहियूं था, निजी शोबे खे हथी ॾेई रहिया आहियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां ऐं मां जो मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो साईं मुंहिंजा शऊर अलाह ताला तरफ़ां असांजे लाइ अनमोल तोहफ़ो आहे उहा शऊर ई कैफ़ियत ई हूंदी आहे जंहिंमें असां फ़ैसिले करण जे क़ाबिल हूंदा आहियूं जेकॾहिं उहो शऊर असां खां खसिजी वञे त पोइ भले ऐं बुरे जो फ़र्क़ु महसूसु ई नाहे थींदो जॾहिं असां तेज़ तर कावड़ में हूंदा आहियूं यानी गुस्से जी कैफ़ियत शिदत सां हावी थी वेंदी आहे त उन्हनि लम्हनि में असां शौरी हालति विञाए वेहंदा आहियूं ऐं लाशौरी में जहिड़ा झगड़ा दोस्तनि अज़ीज़नि सां नाराज़गी रहंदी आहे वरी जॾहिं कैफ़ियत तब्दील थींदी आहे त पोइ पंहिंजो पाण खे बि शर्मसार महसूसु कंदा आहियूं तंहिं करे शौर वारी कैफ़ियत खे सदाई लाइ लाशौरी वारी कैफ़ियत में छॾे न ॾिजे जेकॾहिं ईअं असां छॾे ॾींदासीं त पोइ वॾे नुक़सान जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो

0: जी हाँ समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह जारी उसारी है तमाम जो सा जो साथ रंदो ठीक यारे मांगी तई हने तो वरी हलो प्या कमर्शियल ब्रेक जी तरफ
1: सचल की सरमस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: It's the D-Skin Beauty Cream. In a mojood vitamin E beads and jadid micro beads for khubsurti jo asal raaz. Sirf D-Skin Beauty Cream. In a mojood vitamin E beads and jadid micro beads formula. Amaji skin ke banaye nikhri and chamakdar. Sirf bindihan mein. Dark spots ke kare khatam. Ai diye kudrati asli glow. D-Skin Beauty Cream. Asli glow har diya jo show. A product by Biocon International Pakistan. सिंधड़ी आमों की सरजम
1: सिंध शहरे खास
3: मीरपुर खास
4: छा अवां चायो था त अवां जो
3: सिंधड़ी आमों की सरजमीन
4: अवां चायो था त अवां जो पैगाम बेन ताई पहुंचे छा अवां चायो था त अवां जी
3: आमों की सरजमीन
1: सिंध का शहरे खास
3: मीरपुर खास
4: छा अवां चायो था त अवां जो पैगाम बेन ताई पहुंचे छा अवां चायो था त अवां जी पुडक जी मशहूरी थिए त पोए अवां वट आहे मौजूद जीए मीरपुर खास FM 88 जो आवाज जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद जीए मीरपुर खास FM 88 केतरन ही नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधिक राबते लाए मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 0333-3722-071
3: मीरपुर खास की आवाज
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88

0: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8।
2: इश्क में बड़ा जोर है, बड़ी खुददारी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे
1: यादाश्ता में सहन बाद अमेरिका ईरान विच में अजी थियल गालू मुलतवी। स्विट्जरलैंड तस्दीक कर छी अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस जो भी स्विट्जरलैंड जो दौरो मुलतवी। व्हाइट हाउस की तस्दीक स्विस इख्तियार मूजिब बदर साख में अमेरिका ईरान विच में अजी थियल गालू न थी। जंग बंदी मुआदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलन में 16 शहरी शहीद केतरा जख्मी। लबनान इख्तियार मूजिब इसराइली फौज नपटा थे बम्बारी कई है जैसे नतीजे में केतरा ही घर भी तबाह थी। इसराइली हमलन के नतीजे में 16 शहरी भी शहीद थे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है इसराइली फौज लबनान के बफर जोन का न हटंदी। गजा दिया लबनान मां भी खतरा खत्म कया वा। अमेरिकी दिफा वाले वजीर जो यूरोप में पैंकी फौज की मुकरणी बाबत जायजो वठण जो ऐलान। ईरान से जंग दौरान अमेरिकी फौज से पाबंदी लगाइंदड़ यूरोपी मुल्क भी तनकीद। ब्रसल्स में यूरोपी यूनियन के दिफा वाले वजीर की कॉन्फ्रेंस के खिताब कदे पीट हेक्सेत चयो त ही अड़ो जायजो हों जैमें कुछ मुल्क कामयाब है कुछ नाकाम थन्दा। पीट हेक्सेत तकरीर दौरान कुछ यूरोपी मुल्क के मुफ्तखोर करार दीदे अमेरिका का फायदा खड़ने जो इल्जाम लगाया।

कंबर वेझो जमीन मां मिट्टी खणण था बिंदुरिन में झेड़ो नौजवान कतुल बजना जख्मी गोठ अलीबख्श पमर में जरई जमीन मां मिट्टी खणण था पमर बरादरी की बिंदुरिन में झेड़ो थो फायरिंग के नतीजे में बिलावल पमर बाजी वो मुजीब आजम पमर जख्मी थो पुलिस मुझे बई धुरियों पान में वेझा अजीज आन कंदकोट में भी जमीन के मामले ता बिंदुरिन में झेड़ो थो एक जनो जख्मी गोठ बादल खान सब्जोई में झेड़े दौरान फायरिंग इमरान सब्जोई जख्मी थो चक वेझो पोरहत मुबैना तशद बाद दिल बीहण सबब फौत एनसी दाखिल एक जनो गिरफ्तार टोपी चौक पाड़े जो रवासी मंजूर अहमद शेख मुबैना तशद बाद दिल बीहण सबब फौत थो पुलिस इल्ज़ाम हेठ आयल मुंतजर शेख के गिरफ्तार करे वरतो वधीक जांच जारी

0: ऐं अफ्रीकी मुल्क नाइजर जे एयरपोर्ट ते हथियारबंदनि जो 5 महीननि दौरान ॿियो हमिलो, 35 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

मस्तन ऐं आकिलन में महफ़िल ऐं अंजुमन में मस्तन ऐं आकिलन में महफ़िल ऐं अंजुमन में हर हिकु सभा दहन में हर हिकु सभा अलाह हर हिकु

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई गेस माय मैसेज टू देम वुड बी टूफोल्ड नंबर वन डोनाल्ड जे ट्रंप is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
2: अमेरिकी नायब सदर जे डी वेम्स इसराइली वज़ीरनि ते सख़्त तनक़ीद इसराइल ते अमेरिकी अहसाननि जो बि ज़िक्र करे छॾियो जे डी वेम्स चयो त अमेरिकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजी अकेले ऐं ताक़त इतिहादी खे निशानो बणाए रहिया आहिनि सदर ट्रंप ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीरनि खे होश खां कमु वठणु घुर्जे सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि जे डी वेम्स खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिर करे चुको आहे

कंबर वेझो जमीन मां मिट्टी खणण सां बिंदुरियुनि में छेड़ो नौजवान कतल ॿ ॼणा जख़्मी ॻोठ अलीबख्श पवर में ज़रई ज़मीन मां मिटी खणण सां पवर बिरादरी जी बिंदुरियुनि में छेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में बिलावल पवर मारिजी वियो मुजीब ऐं आज़म पवर ज़ख़्मी थियो पुलिस मूजिबि ॿई धुरियूं पाण में वेझा आज़ीद आहिनि कंदकोट में बि ज़मीन जे मामले सां बिंदुरियुनि में छेड़ो हिकु ॼणो ज़ख़्मी ॻोठ बादल खान सब्ज़ोई में छेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में इमरान सब्ज़ोई ज़ख़्मी थियो

0: मटियारी भरसा शाहपुर दर्प थाने जद में कम दौरान भितकरण सबब पोरत दबिजी फौत गोठ सिंगार में कम दौरान भितकरण सबब रसूल बख्श खोसो दबिजी फौत थो। खैरपुर में मलाह बिरादरी के चंगे मुड़स जहाँ कातिल गिरफ्तार थे खिलाफ़ एस एस पी ऑफिस आदो धरणो मुजाहरीन गुलाम नबी मलाह जहाँ कातिल गिरफ्तार करने जो मुतालबो मुजाहरीन मूजिब जवाबदार हमलो कर असाने चंगे मुड़स गुलाम नबी मलाह के कतल कर पुलिस कुछ बुझने लाय तैयार ना है जवाबदार गिरफ्तार कया वन। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के एयरपोर्ट से हथियारबंदन जो पंज महीनों दौरान बो हमलो पंजटी जना मारे वाया केतरा ही जख्मी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: जीएफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: स्किन मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले, चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: वही घटताई करण जो ऐलान। कौमी असेंबली में खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो ईरान ए अमेरिका विच में मुफाहमती यादाश्त ते सहीं पाकिस्तान की वही कामयाबी है। इस्लामाबाद वायदे के हतमी शिकिल डारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम किरदार अदा कर नायब वजीर आजम इसहाक डार ए घरू वजीर मोहसिन नकवी जो किरदार भी साराह जोगो रहो। ईरान अमेरिका वायदे से दुनिया में पाकिस्तान जो वकार वध्यो आहे। ईरानी सदर फोन करे पाकिस्तान ए कौम जा थोरा मना मुख्य पाकिस्तान के दौरे की दावत दिनी। कौमी वहदत के लिए असा सब एक आयो एक रहंदी। जंगबंदी से खिते में मुआशी खुशहाली इंदी। जंगबंदी से आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थो है। आवाम के पेट्रोल के मद में अज रात वो रिलीफ दिनो वो। कौमी असेंबली ईरान अमेरिका वायदे से कौमी क्यादत के भेटा पेश करो ठहराव मंजूर कर वरतो। वजीर आजम नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल ए वफाकी घरू वजीर समेत बी क्यादत के भेटा पेश कई वही। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाशनामे ते सहन बाद अमेरिका ईरान विच में अजरे थियल गालियों मुलतवी। व्हाइट हाउस तस्दीक कर छी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो भी स्विट्जरलैंड जो दौरों मुलतवी कर स्विस इख्तियार मूजिब बजट स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में अजरे थियल गालियों नींदियों। गाल तैयारियों अमल जारी रह। स्विट्जरलैंड गाल मेजबानी ए सहूलतकारी के लिए बदस्तूर तैयार है। स्विस इख्तियार गाल नई तारीख बाबत आगाह न कर। जंगबंदी मुआदे बावजूद इसराइल या लबनान ते हमला। इसराइली हमलन के नतीजे में 16 शहरी भी शहीद थे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इसराइली फौज लबनान के बफर जोन का हटंदी। गजा जहां लबनान में भी खतरा खत्म कया वेंदा।

वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की सदारत हेठ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन बाबत इजलास हुकूमत जो पासपोर्ट के मुकम्मल तौर से ई पासपोर्ट तरफ मुंतकिल करने जो फैसलो मोहसिन नकवी चयो तो ई पासपोर्ट से मुंतकिली से पासपोर्ट में थींदड़ फ्रॉड रोके सकबो। सिंध हाईकोर्ट गदले पानी की फरहमी खिलाफ दरख्वास्त से घोटकी के डीसी के जाती हैसियत में तलब कर वरतो। 7 जुलाई से रिपोर्ट भी पेश करने जो हुक्म। अदालत चयो आइन के आर्टिकल 9 तहत साफ ए महफूज पानी हर शहरी जो बुनियादी हक है। मामलो इंसानी वकार सेहत ए जिंदगी से सीधो सौ लागापल है। धुरन के नोटिस जारी। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पानी की खोट खिलाफ़ आबादगार जहाँ मुजाहरा धरना। निंदो में पानी की खोट खिलाफ़ आबादगार की ट्रेन ही भी अलामती भुख हड़ताल। आबादगार हारन परतन शागिर्दन शहर की भुख हड़ताल भी शिरकत। आबादगार मूजिब बदीन जिले में पानी के बुहरान सबब ढोर भी उन में मरी रहा है।

कंबर वेझो जमीन मां मिटी खणण था बिंदुरनि में झेड़ो नौजवान कतुल भॼणा जख़्मी गोट अलीबख्श पवर में ज़रई ज़मीन मां मिटी खणण था पवर बिरादरी जी बिंदुरनि में झेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में बिलावल पवर मारिजी वियो मुजीब ऐं आज़म पवर ज़ख़्मी थियो मुबारकपुर वेझो आपघात ॼाणायल लारीअ जे कार इल्ज़ाम हेठि क़तल थियण जो इंकिशाफ भॼणा गिरफ़्तार पुलिस चयो आहे त नारी साइमा खे मामे रसूल बख़्श सरकी टिनि ॼणनि सां गॾिजी क़तलु कयो आहे मटियारी भरिसां शाहपुर दरपुर थाणे जे हद में कम दौरान भिति किरण सबबि पोरत दॿिजी फौत गोठ सिंगार में कम दौरान भिति किरण जे नतीजे में रसूल बख़्श खोसो दॿिजी फौत थी वियो कराची में मंशा डीलर पिंकी जा गिरफ़्तार कयल ॿ साथी अदालत में पेश अदालत जवाबदार आकिब ऐं ग़ुलाम अब्बास खे ॿिनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते जांच आफ़िसर खां अघ भराई रिपोर्ट बि तलब करे वरिती सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जमात इस्लामी जो पेट्रोल ऐं बिजली सस्ती न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज पेट्रोल ऐं बिजली सस्ती करण जो मुतालबो नौशहरो फिरोज़ बदीन ऐं कंधकोट में जमात इस्लामी जे सर ते एहतजाज कयो वियो अॻवाननि चयो आहे त हुकूमत आवाम ते रहम करे ऐं पेट्रोल सस्तो करे

0: तनोजान मोहम्मद में सड़ियल ट्रांसफार्मर तब्दील न थियण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो वीरपुर ख़ास रोड ते धरणो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त चइनि ॾींहनि खां ॻोठ जो ट्रांसफार्मर सड़ियल आहे, सख़्त परेशानियुनि जो शिकार आहियूं। ट्रांसफार्मर पंज भेरा सड़ी चुको आहे, पंहिंजी मदद पाण त चंदो करे ठहिराईंदा आहियूं। वॾो ट्रांसफार्मर ॾिनो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

चाहिनि था त हर मर्ज़ जी दवा आहे, लेकिन जेको इश्क जो मरीज़ आहे उनजी दवा ई कान्हे, ऐं उनखे तबीब यानी डॉक्टर तड़े कढी छॾियो अथऊं। तुंहिंजी दवा असां वटि न आहे, भिड़ाई फरमाए थो तड़े तबीबन।

काई साईं डॉक्टर सां वेज सां हकीम सां दाहे सां मुखातिब थी चे थो ए वेज ए डॉक्टर मुखे दवा न दे मां मर बीमार हो जा इन बहाने मुखा पंहिंजो महबूब पुछण अचे सरकार फरमाइन था।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वायदे की भंजकड़ी जो जवाब तबाह कदड़ हों ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालेबाब खबरदार कर सुप्रीम लीडर के हुकुम से अमल करने का पाबंद आयू तय थियल वायदे के समूरी शिकुन अमल थे घुर्जे जैसे बी धुर बीहर जंग तरफ वी तो जवाब पैं का सख्त हों ईरान अमेरिका गालियों में काबे रंड कना है ईरान अमेरिका विच में गालियों महरमल हराम सबब देर जो शिकार थियो आहिं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चवाए त जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन थी सठ डी में मरहलेवार गालियों वारो अमल मुकम्मल थींदो वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा आज रात तेल की कीमतों में वही घटाई करने का ऐलान कौमी असेंबली में खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहिए जंगबंदी से आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थो है हुकूमत पेट्रोल सस्तो थे रिलीफ देने वायदो किया हो आवाम के पेट्रोल के मद में अज रात वो रिलीफ दिनों वो

सिंध हाई कोर्ट गदली पानी की फरहमी खिलाफ दरख्वास्त घुटके के डीसी की जाती हैसियत में तलब कर वरतो। 7 जुलाई से रिपोर्ट भी पेश करने जो हुक्म अदालत चयो आईन के आर्टिकल 9 तहत साफ ए महफूज पानी हर शहरी जो बुनियादी हक है। मामलो इंसानी वकार सेहत ए जिंदगी से सीधो सौ लागापल है। धुरन की नोटिस जारी। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पानी की खोट खिलाफ आबादगार जहां मुजाहरा धरना। निंदो में पानी की खोट खिलाफ आबादगार की 3 भी अलामती भुख हड़ताल। आबादगार हारन परतन शागिदन शहर की भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगार मूजिब बदीन जिले में पानी के बहरान सबब ढोर भी उन वे मरी रहा है। कंबर वेझो जमीन में मिट्टी खड़न ताबिंदुरी में झेड़ो नौजवान कतुल बजना जख्मी। गोठ अलीबख्श पवर में जरई जमीन में मिट्टी खड़न था पवर बिरादरी की बिंदुरी में छेड़ो थो। फायरिंग के नतीजे में बिलावल पवर मार वो मुजीब आदम पवर जख्मी थे। मुबारकपुर वेझो आबगा दियार नारी के कारण इल्जाम हेठे कतल थे इंकशाफ बजना गिरफ्तार। पुलिस वाहत नारी साइमा के मामे रसूल बख्श सरकी 3 जन से गद की कतल किया है। मटियारी भरसा शाहपुर दर्प थाने के हद में कम दौरान भित किरण सबब पोहत दब की फौत। गोड़ सिंगार में कम दौरान भित किरण के नतीजे में रसूल बख्श फोसो दब की फौत थी। कराची में मनशिया दीनर पिनके जा गिरफ्तार कल साथी अदालत में पेश। अदालत जवाबदार हाकिम गुलाम अब्बास के 2 दिन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। अदालत इंदड़ बुधन से जांच ऑफिसर का अग भराई रिपोर्ट भी तलब कर वरती। सिंध के मुख्तलिफ शहर में जमात इस्लामी जो पेट्रोल ए बिजली सस्ती रखने खिलाफ एहतजाज। पेट्रोल ए बिजली सस्ती करने जो मुतालबो मीरपुर खास लारकानो नौशहर फिरोज बदीन ए कंधकोट में जमात इस्लामी के सद से एहतजाज किया। अगवान चवा तो हुकूमत आवाम से रहम करे पेट्रोल सस्तो करे।

घोटके में पुलिस जे मुबैना तशद्दुद में जख्मी थियल नौजवान जे वारसनि जो एहतजाज ज़िम्मेवार पुलिस अहलकारनि खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो मुजाहिरीन मूजिब पुलिस घर ते चढ़ाई करे नौजवान सदाम मलिक खे गिरफ़्तार कयो हो जंहिंखे तशद्दुद करण बाद रिश्वत वठी छॾियो वियो ज़िम्मेवार अहलकारनि खिलाफ कार्रवाई कई वञे।

0: ऐं अफ्रीकी मुल्क नाइजर जे एयरपोर्ट ते हथियारबंदनि जो 5 महीननि दौरान ॿियो हमिलो, 35 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ऐं शानदार कैरियर मौको पेश कयो वञे थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाइ काबिल तजुर्बेकार ऐं ज़िम्मेवार उम्मीदवारनि खां दरख़्वास्तूं तलब कयूं वञनि थियूं। GAFM एक अहिड़े प्रोफेशनल फर्द जी ॻोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ऐं ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मज़बूत सलाहियतूं

0: रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फौरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: आया की न मारू विसारू वतन के

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ईरान ऐं अमेरिका विच में मुफ़ाहमती याददाश्त ते सहियूं पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी आहिनि। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त इस्लामाबाद वाइदे खे हतमी शिकिल ॾियारण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो अहम किरदारु आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो किरदारु बि साराह जोॻो रहियो। ईरान अमेरिका वाइदे सां दुनिया में पाकिस्तान जो वक़ारु वधियो आहे। ईरानी सदर फ़ोन करे पाकिस्तानी क़ौम जा थोरा मञा, मूंखे पाकिस्तान जे दौरे जी दावत ॾिनी। क़ौमी वहदत लाइ असां सभु हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। जंगबंदी सां खिते में मुआशी खुशहाली ईंदी। ईरानी सदर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी आख़िरी रस्मुनि में शिरकत जी दावत ॾिनी आहे। आख़िरी रस्मूं 3-4 जुलाई ताईं थींदियूं। पाकिस्तानी वफ़द बि शरीक थींदो। क़ौमी असेंबली ईरान अमेरिका वाइदे ते क़ौमी क़यादत खे भेटा पेश करण वारो ठहराउ मंज़ूरु करे वरितो। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर समेत ॿी क़यादत खे भेटा पेश कई वई। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते सहन बाद अमेरिका ऐं ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं मुलतवी। व्हाइट हाउस तसदीक करे छॾी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जो बि स्विट्ज़रलैंड जो दौरो मुलतवी कयो वियो। स्विस इख़्तियारनि मूजिबि बर्जन स्टॉक में अमेरिका ईरान विच में अॼु थियल ॻाल्हियूं न थींदियूं। ॻाल्हियुनि जे लाइ तयारियुनि जो अमल जारी रहंदो। स्विट्ज़रलैंड ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ऐं सहूलतकारी जे लाइ बदस्तूर तयारु आहे। स्विस इख़्तियारनि ॻाल्हियुनि जी नई तारीख़ बाबति आगाह न कयो। जंगबंदी मुआदे बावजूद इसराइल जा लबनान ते हमला न रुकिया। इसराइली हमलनि में वधीक 16 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी इख़्तियारनि मूजिबि इसराइली फ़ौज नफ़्तिया ते बमबारी कई आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई घर बि तबाह थी विया आहिनि। इसराइली हमलनि जे नतीजे में 16 शहरी बि शहीद थिया आहिनि। हिज़्बुल्लाह जे जवाबी हमलनि में 14 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो आहे त इसराइली फ़ौज लबनान जे बफ़र ज़ोन खां पोइ ते न हटंदी। गज़ा जी लबनान मां बि ख़तरा ख़तम कया वेंदा।
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस जी इसराइली वज़ीरनि ते सख़्तु तनक़ीद। इसराइल ते अमेरिकी अहसाननि जो बि ज़िक्र करे छॾियो। जे डी वेंस चयो त अमेरिकी हथियार इसराइल खे बचाए रहिया आहिनि। इसराइली वज़ीर दुनिया में पंहिंजे अकेले ऐं ताक़तवर इतिहादी खे निशानो बणाए रहिया आहिनि। सदर ट्रंप ते तनक़ीद कंदड़ इसराइली वज़ीरनि खे होश खां कमु वठणु घुरिजे। सदर ट्रंप ते तनक़ीद करण बदिरां ज़मीनी हक़ीक़तुनि जो जाइज़ो वठनि। जे डी वेंस खां पहिरीं सदर ट्रंप बि इसराइल ते नाराज़गी ज़ाहिरु करे चुको आहे।

वायदे की भंजकड़ी जो जवाब तबाह कदड़ हों ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालेबाफ खबरदार कर सुप्रीम लीडर के हुक्म से अमल कर पाबंद आयू तय थल वायदे के समूरन शिकुन अमल थे घुर्जे जैसे बी धुर बीहर जंग तरफ बधी तो जवाब पहरी का सख्त हों ईरान अमेरिका गालियों में का भी रंड कंदा है ईरान अमेरिका विच में गालियों महरमल हराम सबब देर जो शिकार थियो आहिं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त जुलाई जे पहिरें हफ़्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई जी तदफीन थींदी सठ ॾींहनि में मरहलेवार गालियुनि वारो अमल मुकमल थींदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां अॼु राति तेल जी क़ीमतुनि में वॾी घटिताई करण जो ऐलान क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त जंगबंदीअ सां आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्तो थियो आहे हुकूमत पेट्रोल सस्तो थियण ते रिलीफ ॾियण जो वाइदो कयो हो आवाम खे पेट्रोल जे मद में अॼु राति वॾो रिलीफ ॾिनो वेंदो

सिंध हाई कोर्ट गदले पानी की फरहमी खिलाफ दरख्वास्त घुटके के डीसी की जाती हैसियत में तलब कर वरतो। 7 जुलाई से रिपोर्ट भी पेश करने जो हुक्म अदालत चयो आईन के आर्टिकल 9 तहत साफ ए महफूज पानी हर शहरी जो बुनियादी हक है। मामलो इंसानी वकार सेहत ए जिंदगी से सीधो सौ लागापल है। धुरन की नोटिस जारी। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पानी की खोट खिलाफ आबादगार जहां मुजाहरा धरना। निंदो में पानी की खोट खिलाफ आबादगार की 3 भी अलामती भुख हड़ताल। आबादगार हारन परतन शागिदन शहर की भुख हड़ताल में शिरकत। आबादगार मुजिब बदीन जिले में पानी के बहरान सबब ढोर भी उन वे मरी रहा है। कंबर वेझो जमीन में मिट्टी खड़न ताबिंदुरन में छेड़ो नौजवान कतुल बजना जख्मी। गोठ अलीबख्श पवर में जरई जमीन में मिट्टी खड़न था पवर बिरादरी की बिंदुरन में छेड़ो थो। फायरिंग के नतीजे में बिलावल पवर मारे वो मुजीब आदम पवर जख्मी थे। मुबारकपुर वेझो आबगा दियार नारी के कारण इल्जाम हेठ कतल थे इंकशाफ बजना गिरफ्तार। पुलिस वाहित नारी साइमा के मामे रसूल बख्श सरकी 3 जन गड़ी कतल किया है। मटियारी भरसा शाहपुर दर्प थाने के हद में कम दौरान भित किरण सबब पोहत दब की फौत। गोठ सिंगार में कम दौरान भित किरण के नतीजे में रसूल बख्श फोसो दब की फौत थी। कराची में मंशिया दीन पिनके जा गिरफ्तार कल ब साथी अदालत में पेश। अदालत जवाबदार आकिब ए गुलाम अब्बास के 2 दिन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। अदालत इंदर बुधनी से जांच ऑफिसर का अग भराई रिपोर्ट भी तलब कर वरती। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में जमात इस्लामी जो पेट्रोल ए बिजली सस्ती न थियण खिलाफ एहतजाज। पेट्रोल ए बिजली सस्ती करने जो मुतालबो मीरपुर खास लाड़काणो नौशहर फिरोज बदीन ए कंधकोट में जमात इस्लामी के सद एहतजाज किया वो। अगवान चाहे तो हुकूमत आवाम से रहम करे ए पेट्रोल सस्तो करे। घोटके में पुलिस के मुबैना तशद में जख्मी थल नौजवान के वारसन जो एहतजाज। जिम्मेवार पुलिस एहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। मुजाहरीन मूजिब पुलिस घर से चढ़ाई कर नौजवान सदाम मलिक के गिरफ्तार किया हो जैसे तशद करने बाद रिश्वत वी छो। जिम्मेवार एहलकार खिलाफ कार्रवाई कई वे।

0: अफ्रीकी मुल्क नाइजर जे एयरपोर्ट ते हथियारबंदनि जो 5 महीननि दौरान ॿियो हमिलो, 35 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है, देर न करो, अभी अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार कैरियर मौके पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्त तलब कई वने थी GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में आए जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके आए देर न करो अभी अप्लाई करो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ऐं शानदार कैरियर मौक़ो पेश कयो वञे थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौज़िस पोस्ट लाइ काबिल तजुर्बेकार ऐं ज़िम्मेवार उमीदवारनि खां दरख़्वास्तूं तलब कयूं वञनि थियूं। GAFM हिकु अहिड़े प्रोफेशनल फर्द जी ॻोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ऐं ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मज़बूत सलाहियतूं रखे ऐं इदारे खे बहितर अंदाज में अॻिते वधाए सघे। ख़्वाहिशमंद उमीदवार पंहिंजी CV व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करियो, अभी ही अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 8:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: गुनाह का बोझ

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: ढाडो सुठो
1: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

0: GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम ऐं शानदार कैरियर मौक़ो पेश कयो वञे थो। GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाइ काबिल तजुर्बेकार ऐं ज़िम्मेवार उम्मीदवारनि खां दरख़्वास्तूं तलब कयूं वञनि थियूं। GAFM एक अहिड़े प्रोफेशनल फर्द जी ॻोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ऐं ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मज़बूत सलाहियतूं रखे ऐं इदारे खे बहितर अंदाज में अॻिते वधाए सघे। ख़्वाहिशमंद उम्मीदवार पंहिंजी CV फॉरन व्हाट्सएप ज़रिए मोकिलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करियो, अॼु ई अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज। पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़,
1: GAFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: उठी तरस तनुआई वगुनी गरजो, उठी तरस तनुआई वगुनी गरजो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। उठी तरस तनुआई, उठी तरस तनुआई वगुनी गरजो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। उठी तरस तनुआई तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी, ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी। तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी, ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी। शल तो के बिडे रब उम्र घनी, जोरो जल्द पहुंचाए जा दिल पर जो। ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो, ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो, पांजे नढड़े अते अली असगर जो। ओठी तरस सजाए वन पहुंचंदे जाते वणणो थई, मुझी कयल सदा के मनणो थई। वन पहुंचंदे जा

नदग जो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो पांज नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठी अपर अहवाल तडस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठी अपर

हर हर जो ओठी तरस सजाए भगोनी कर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नाम अथम अबो बाबा हुसैन इमाम अथम चयो साईं सुगरा।

वरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़ी जान जद बुधन लगो ओठी बे अख प्यार थी रोण लगो लफ्ज़ बचड़ी।

0: महेश्वर जो कोठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए कोठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए।
1: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।